याले माने एक न चेत समूड मन हर बिसरत तेरे गुण गलियारा। नाह जति सती नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा।

0: उन्हें बथेरा किया अगों कि मैं तेरा पति हाँ, तू मेरी पत्नी है, तू शंका ना कर, ये तेरे सिदक नू भाग लगा है। पर उन्हें यकीन नहीं आता, तो लोग कट्ठे होके आण के जो वेख्या झगड़ते तो पूछा दोनों ने आपो अपना पक्ष दसिया। फिर उन्होंने जेडे उत्थे मनुख आण के इन्हों का झगड़ा दूर करन वास्ते आए हैं, इन्हों का दोनों के पक्ष सुन के फिर उन्होंने वस की गल नहीं कि वह फैसला कर सकते, बहुत वड्डी गल सी। वो बीबी कहती कि मेरा पति पिंगला ही, वह कहिंदा मैं उही पिंगला हाँ, मैं इत्थे इस जल में इनान करके मैनू इस कंचन वर्गी शरीर परमात्मा ने बख्शिश किया, तेरे सतगुरु भाग लगा, पर मन की नहीं यकीन नहीं आता उन्हें। फिर उन्हें मनुखा ने कहा भी तुम झगड़ो ना, ताड़ा न्या असी भी नहीं कर सकते, कोई होर भी नहीं कर सकता बिना सतगुरु तो। इतों थोड़ी दूर से धन गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी जो संतोख सर के सरोवर की सेवा करवा रहे हैं, उत्थे सतगुरु जी जो शोभनीक हैं तुसी उन्हां दे पास चलो, अं तुहानू उन्हां दे पास ले चलते हाँ। फिर बीबी रजनी ते उन्हां दा बीबी रजनी का पति पिंगला ते जिहड़े नाल उत्थे मनुख हन वह सारे श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी की शरण च आए हैं। वो बीबी ने बड़ा प्रसन्न होकर जदों ये गल सुनी कि श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह तुहाडा फैसला करनगे, तां वो जिस तरह प्रसन्न हुई है, जिस तरह इस चल के श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह शरण च आते हैं, अपना सारे बड़े प्यार दे नाल सतगुरु दा पावन पवित्र अध्यास इतिहास सरण करना करिए जी।
1: एम सुन कै त्रिया और हुलसाई।
0: जदों उन्हां मनुखां ने इस बीबी रजनी नूं दस्या कि ताडा जिहड़ा न्याय असीं नहीं कर सकते, होर भी नहीं कोई कर सकता बिना सतगुरां तों, ते श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी ताडा न्याय कर सकते हैं, तो जदों बीबी रजनी ने श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी का पावन पवित्र नाम सुनिया ते बड़ी प्रसन्न हुई है।
1: सतगुर ते मम संसह जाई।
0: उन्हें मन विच धारण कर लिया, विश्वास हो गया कि जे सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी साडे संकट नूं दूर करनगे
1: तब दोनो कुछ नर लै साथ।
0: फिर ये दोनों ही बीबी रजनी ते इन्हां दा जिहड़ा पति है पिंगला है, हुण पिंगला साहब ने दूर करता कोड उहदा, ये दोनों जाने ते जिहड़े नाल ओह मनुख हन उन्हां नूं नाल लै के चले हन।
1: गए जहां गुर अर्जन नाथ।
0: ये सारे दोनों पति ते पत्नी ते नाल ओह जिहड़े नाल सिख सन धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी जिथे संतोख सर की सेवा चला रहे हैं सतगुरु जी, उत्थे ये सारे दोनों पति पत्नी ते सिख गए हैं।
1: जोगी को ब्रतंत हुआ रहे हो।
0: हुण उत्थे तां कुछ चिर पहला आपां इतिहास सुनिया कि इत्थे संतोख सर दी खदाई समय एक जोगी निकलिया जो त्रेते जुगता बैठा होया है, सारी संगतां ने यह सारा ही कौतक देखिया संतोख सर वाला संतोखे जोगी वाला। तो इस तरह जिहड़ा ये संगतां हन उत्थों दीआं वह पहला तो उही जिहड़ा कौतक देख के सुन के अपनी अखीं देख के बड़े हैरान हन।
1: महा अचंबा सब उर लहियो।
0: इस करके ये जिहड़ी अचंबा होया कि जोगी तन तीसरे जुग का बैठा होया, ये सारा कौतक देख के सारे बड़े हैरान सन पहला ही।
1: द्वितीय अचंबा एहो लै गई।
0: हुण दूसरा जिहड़ा कौतक है हैरान कर देने वाला वह जोगी नालों भी परे है, तो वह बीबी रजनी लैके आई है मसला ऐसे बरतांत दा।
1: हाथ जोर पद बंदत भई।
0: इन्हें बीबी रजनी ने आके धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी के चरणों च वंदना की, दोनों हाथ जोड़ के
1: तिसके पत ने मस्तक टेका।
0: इहदा जिहड़ा पति है उन्हें भी धन श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह के चरणों ते नतमस्तक होया, सतगुरु नमस्कार कीती है।
1: बैठे सार तट जलद विवेका।
0: धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी जेड़े उस तीर्थ उस सरोवर दे जिथे सेवा चलदी उहदे कंढे टाली दे थले सतगुरु

0: ਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪੰਬਾਦ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਔਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ
1: 1550 KRPI ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਸਰੀ।
2: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ ਫਰਨਡੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
3: ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਨਿਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਤੋਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਦਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਮੀਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਵਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਮੀਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਨਮ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਆ ਜਨਮ ਹੈ ਆ ਮਰਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ? ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਮੰਗੋਲ ਨਸਲ ਹੈ, ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਸਾਂਵਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਦੀ ਮਾਇਲ ਆ, ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਖਲੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸਦਾ ਕੈਸਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। अत्यंत सुंदर है फिर भी कोई रूप नहीं। अगर उसनु व्यक्ति मनदे हां तो लाजमी कोई रंग रूप मनना पेगा। साहब कहन चक्र चैन अर बरन जात अर पात नहिं जे, रूप रंग अर रेख भेक को कह न सकत के। अगर उसनु व्यक्ति मनिए तो उस परमात्मा दा कोई मजहब भी होवेगा, हिंदू होवेगा, मुस्लिम होवेगा, सिख होवेगा, ईसाई होवेगा, यहूदी होवेगा, पारसी होवेगा, जैनी होवेगा, बोधी होवेगा, कुछ ना कुछ होवेगा अगर वो व्यक्ति है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जरूरत देखो फरमान करते ने, नमस्तम अमजबे नमस्तस्त अजबे, तेरा कोई मजहब नहीं। जब तू रंग रूप रेख तो न्यारा है, जात पात तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, तेरा कोई मजहब नहीं है। तू हिंदू नहीं है, तू सिख भी नहीं है, तू मुस्लिम नहीं है, तू क्रिश्चियन भी नहीं है। शब्द मैं फिर थोड़े सामने रखा गुरु गोविंद सिंह जी दे, नमस्तं अमजबे नमस्कार है, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है तेनो, तू अजब स्वरूप है, तू अजब स्वरूप है। दो नुक्ते होर बयान करके मैं कुछ इतिहास दे पन्ने रखने ने थोड़े सामने। अगर उसनु व्यक्ति मन लईए ना तो व्यक्ति एक समय च एक ही थां ते आउंदा है। जिवें तुसी इत्थे गुरुद्वारा साहब बैठे हो अपने घर दे च नहीं हो। व्यक्ति एक समय एक ही थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो सतवें पाताल या सतवें आसमान या किसे सचखंड बैकुंठ दे च बैठा होगा, कम से कम इत्थे ते कोई नहीं, व्यक्ति दी तरह कोई नहीं। अगर है तो फिर कहो केड़ा व्यक्ति रब है, खुदा है, परमात्मा। व्यक्ति एक समय एक ही थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। सतगुरां दी बाणी कहिंदी है, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजन हार जियो। हे सिरजन हार, मैं जिथे जाना तू उथे है, तू ते व्यापक है। व्यक्ति व्यापक नहीं हो सकता। अगर उसनु व्यक्ति मन लिए तो व्यक्ति सर्वकाल भी नहीं है, हर समय नहीं है। जिवें असी 20-30-40-50-60 साल पहले नहीं सी, हर एक बार ये गल आखी जा सकती है, तो हर एक 10-20-30-40 साल बाद नहीं होवेगा। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा किथे तेडे मापिया जिन्नी तू जनिया, कल ते मां है सी। बाबा फरीद कहते पता नहीं किथे चली गई, 5 साल पहले ते पिता है सी, आज कोई नहीं। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो परमात्मा नु भी काल दिच बयान करना पेगा, समय दिच बयान करना पेगा। इंज आखांगे परमात्मा होया सी या परमात्मा होवेगा। कलगीधर पातशाह कहते हैं, अकाल है अजाल है उस समय दिच नहीं है, वो है सो है, होया सी नहीं कह सकते, होवेगा नहीं कह सकते, वो है सो है, समय तो बाहर है। अगर परमात्मा नु व्यक्ति मन लईए, इस नुक्ते नु बयान करना जरूरी सी। तो एक होर प्रश्न भी खड़ा होगा, क्योंकि व्यक्ति दे दो रूप ने, स्त्री और पुरुष। परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है। इसनु बड़े विस्तार सहित गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने बयान किया, पर इस वक्त मैं नहीं छेड़ना, क्योंकि आप पुरब मना रहे हैं। तो फैसला करना पड़ेगा परमात्मा स्त्री है कि पुरुष है, अगर व्यक्ति है। जिन्हा जिन्हा ने भी व्यक्ति दे रूप च मने है वो किधरे पुरुष की पूजा किधरे नारी की पूजा तो बच नहीं सके। ते गुरु ग्रंथ साहब का फैसला है जैसा सेवे तैसा होए, जैसा परमात्मा नु मनोगे वैसे ही हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। जिस दे विचार करिए, जिनू सोचिए, जिनू याद करिए, मनुख का मन वैसा ही हो जाता है। तन ते एक दिन खाक हो जाना है, राख हो जाना है, अगों साडा संस्कारां दा ढांचा जांदा है। अगर उस विच इस्त्री चिंतन सी, इस्त्री दियां यादां सन, इस्त्री दी विचार सी, अगला जन्म फिर इस्त्री दा। महामाई की पूजा करे नर से नार होए औतरे, गुरबाणी दा फैसला। वो व्यक्ति नहीं है, इस वास्ते वो इस्त्री ते पुरुष भी नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने धनाश्री राग दे, सुन मंडल एक जोगी वैसे है, नार ना पुरख कहो को कैसे। सुन मंडल निर्विचार अवस्था उन्हों सुन समाधि कहने, सुन समाध अनहद तैनाद कहन ना जाई अचर्ज बिस्माद। जिस दिन चलदे हुए विचार मन दे च रुक जांदे, निरंकार प्रगट हो जांदा है। जद कोई भी फुरना ना चले, कोई भी विचार ना चले, उन्हों गुरु अर्जन देव जी सुन समाद कहंदे ने। सुखमनी साहब दी पंक्ति, सुन समाद अनहद तैनाद। कितना भी पाठ करदे अंदर साडे विचार चलदे ने, कितना भी वाहेगुरु वाहेगुरु जपी अंदर अपने अपने फुरने चलदे ने, कितना ही कथा कीर्तन सुनिए ते करी अंदर फुरने चल देने, वो नहीं रुकदे। सुन समाद अनहद तैनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद। सुन समाद अवस्था दे जर्रे जर्रे नाल एक जुड़िया दिखाई दे रहा है। महाराज कहने स्त्री पुरुष नहीं है। सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। तो हुण मुख्तसर में अर्ज करा, परमात्मा की ये शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति है रंग रूप तो न्यारी, चक्र चैन तो न्यारी, वर्ण जात तो न्यारी, मजहब तो न्यारी, एक व्यापक शक्ति है। पर शक्ति तो मुराद किधरे ए ना ले लेना कि जड़ है, नहीं चेतन है। उस शक्ति नो भारत दे प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने इंज कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, सदी भी है, है। शिवम प्रकाशमान है, शिव दे अर्थ प्रकाश चानना, प्रकाशमान है। सुंदरम अति सुंदर है, अति सुंदर है। इनू गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते ने, सत सुहाण सदा मन चाओ। तू सत है, सुहाण अति सुंदर है, सदा मन चाओ, तू सदी भी खिड़िया होया है, आनंद स्रोत है। वैदिक ऋषियां ने भी ऐसा कहा, सत चित आनंद। वो सत है, चित चेतन है, जड़ नहीं है। शक्ति ते अग दे च भी है, अग जड़ है। शक्ति ते पानी दे च भी है, पानी जड़ है। शक्ति ते पवन दे च भी है, पवन जड़ है। परमात्मा शक्ति है, पर चेतन सत चित आनंद, आनंद स्वरूप है। यही कारण है कि मनुख दी चेतना शक्ति तो प्रभावित है, मनुख ताकत तो प्रभावित है। मैं सवेरे इस विचार नूं सामने रखिया सी, जिथे ताण हुंदा है उत्थे माण हुंदा है। इस वास्ते हर मनुख ताण दी तलाश च है, शक्ति दी तलाश च है। ते दूर क्यों जाओ, परमात्मा एक शक्ति है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्या। ऐसी शक्ति जो रंग रूप तो निहारी है, सारा आकार उस तो आया है जिदा कोई आकार नहीं।

इस पंक्ति विच अरजोई है, बेनती है, सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नूं अरदास तक ले जाए, बेनती तक ले जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने जैसे ईसाई, भी चर्च क्यों जा रहे हो? प्रेयर करन जा रहे हैं, अरदास करन जा रहे, सिर्फ अरदास करन जा रहे। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनन जा रहे हैं, कथा सुनन जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करन लई जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करन जा रहे हैं, सेवा करन लई जा रहे हैं, पुन करन लई जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया पुन, सुनिया होया कीर्तन, सुनी हुई कथा, इसका फल की है? अंदरों अरदास दा निकलना। वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। ये कदों निकलती है? जप कर करके निकलती है, कीर्तन सुन सुन के निकलती है, कथा सुन सुन के निकलती है, पाठ कर करके निकलती है। उंज नहीं निकलेगी, उंज बथेरी अरदासा होंदियां ते मनुख कर। कोई रस्मी अरदास, दीवान दी अरदास, दिल दी गहराई चो अरदास निकलती है, जप कर करके, तप कर करके, साधना कर करके, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के, बाणी पढ़ पढ़ के, पाठ कर करके, उंज अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई च। और जदों ये अरदास निकलती है फिर व्यर्थ भी नहीं जाती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जिहड़ी अरदास निकली है खुदा तक पहुंचेगी। इसे नूं गुरबाणी कहिंदी है, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सारे शब्द विच इक अरदास है, यक अर्ज असी अरदास कहने हैं, परशियन दे कहने ने अरजोई करने, अर्ज करने, अर्ज करने, अरजोई है। संस्कृत दे च, हिंदी च कहने ने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहने ने अर्ज करनी है, अरजोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नो जन्म देता है, अरदास करनी है। ते अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दास्त हाथ जोड़ के अरजोई करने, दस्त बस्ता हथानू जोड़ के अरजोई करने, बेनती करने, प्रार्थना करने। सतगुर कहंदे ने यक अर्ज, एक मेरी अरजोई, एक मेरी प्रार्थना, एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, गोश कन्ना नु कहंदे ने। ऐ करतार जे तू कन ला के सुने, मनुख जिथे आंदा है उथे ही उसके कन आंदे ने। घर विच बैठीए मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे नहीं सुन सकते, क्योंकि असी जिथे बैठे कन उथे ही ने। जिथों सानू सुनाया जा रहा उथे साडे कन कोई नहीं। मनुख जिथे आंदा है उसदियां इंद्रियां उथे ही आंदियां, उसदी जबान उथे ही आंदी है, उसदियां अखां उथे ही आंदियां। जिथे है उथे इथे वेख सकदा है, जिथे नहीं है नहीं वेख सकदा, जिथे है सुन सकदा है, जिथे नहीं है नहीं सुन सकदा। मनुख जिथे है उहदे ज्ञान ते जद व्यापक है ते उहदा सुनना भी व्यापक है। किसे थां भी अरजोई कीती जा सकती है, किसे थां। परमात्मा व्यापक है, उदा वेखना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हे प्रभु तू कन कर भाव सुन, हे करतार हे सृष्टि दे रचनहारे। एक अरजोई एक बेनती है। फिर अगलियां पंक्तियां च जिस दे अगों बेनती कर रहे हैं उसकी महिमा बयान कर देना। हां जी,

गुरु अंगद साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, आज सिखी महाराज कहते जोगी ने किया किरत छड़ दे घर बार छड़ दे बंधन छड़ फिर बंधन कटांगे। महाराज कहते जे सारा संसार ही किरत छड़ दे ते अन्न कित्थों आएगा, कणक कित्थों आएगी। कणक कौन वड्डेगा, आटा किवें पीएगा, जगत किवें चलेगा। ये ते संसार विच लोग किरत करदे ने ते जोगी दे खप्पड़ विच फेर कुछ पैंदा। कह दो गज के सर लोग किरत ही ना करना संसार कैसे चलेगा।

बड़ी वड्डी गल कही गुरु अंगद देव जी ने, भाई वीर सिंह ने लिखी जे स्टेज ते बैठे मुंडे भी जरूर सुनन, भैणा भी सुनन, जिन्हां जिंदगी लाई लिखी। गुरु अंगद साहब ने ओ जगा धरनी सिख नू की किया, जेड़ा किरत करके भगती करदा ओनू 100% तो भी उत्ते महात्म झोली च पैंदा, 100% तो भी उत्ते। जेड़ा अपनी किरत नहीं करदा।

महाराज कहंदे कोई साधु संत महात्मा नाम दी कमाई करन वाला जदों किसे दा भोजन ग्रहण करदा ओनू अपनी कमाई देनी पैंदी, जदों किसे दे वस्त्र ग्रहण करदा अपनी कमाई देनी पैंदी है। जे कोई किरत करदे आ, भगती करदा, सिमरन बंदगी करदा, ओदी 100% ओदे कोल रहिंदी है, ते नाल गुरसिखां संतां महात्मा दा भावना सत्कार रखदा, उहनां दी कमाई विचों वी कमाई लै के 100% तों उत्ते झोलियां ओदियां भर जांदियां, गज के आखो सतगुरु।

0: to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई ता दुखी है। जे औलाद है ता हुकम विच नहीं है वो ता दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखा दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: जिसे
1: बीज मंत्र सर को ज्ञान
0: जो वरनामे जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सत्संग पावेजन कोई
1: कर कृपा अंतर उरतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को तार है
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत कितै न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दाद संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दर का परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सो जी परे
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: रब की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: तैसा हरक तैसा उस होग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: तैसा अमृत तैसी बिकाटी
1: तैसा मान तैसा अभिमान
0: तैसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताए साई जुगत
0: नानको प्रख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाव
0: जित जित कर रखे तैसा तन्ना
1: आपे करण करावन जोग
0: भावे सोई फन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पए निहाल श्लोक
1: उस्तत करे अनेक जन अंत न पारा वार
0: नानक रचना प्रभ रची बहुब दिनक परकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट पै तीर्थ वासी
0: कई कोट बन प्रमय उदासी
1: कई कोट वीर के श्रोते
0: कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी
0: कई कोट कब काव विचारे
1: कई कोट नापतन नाम त्या वहे
0: नान करते का अंत न पावे
1: कई कोट पै अभिमानी
0: कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर
0: कई कोट अभिग आत्म ने
1: को कई कोट पर दर्भ को हिरहे
0: कई कोट पर दुख न करें
1: कई कोट माया श्रम माहे
0: कई कोट पर देश भ्रमा है
1: जित जित लाभ होते तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंथी सर्प उपाय
0: कई कोट पात्र बृख निपजाए
1: कई कोट पवन पानी में संतर
0: कई कोट देश भू मंडल
1: कई कोट शशि सूर नक्षत्र
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र
1: सगल समग्री अपने सूत धार
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार
1: कई कोट राजस तामस सातक
0: कई कोट वेद प्राण समृति अर शास्त्र
1: कई कोट की रतन सुमुंद
0: कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट की चिर दीवे
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
1: कई कोट जख के निर्पसाच
0: कई कोट भूत प्रेत सु कर मृगाच
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर
0: नानक आप लिपतरे आप प्रभुर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है
0: कई कोट बहु जोनी फिरे
1: कई कोट बैठ सही खाहे
0: कई कोट काले थक पाहे
1: कई कोट की ये धनवंत
0: कई कोट मैं चिंत
1: जय जय भाणा तह तह राखे
0: नानक सब कुछ प्रभ के हाथे
1: कई कोट भय वैरागी
0: राम नाम संग तन लिव लागी
1: कई कोट प्रभ को खोजंते
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते
1: कई कोट दर्शन प्रप्यास
0: जिनको मिलियो प्रभ विनाश
1: कई कोट मांगे सत्संग
0: पार ब्रह्म तिन लगा रंग
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न
0: नानक तेजन सदा धन धन
1: कई कोट खानी अरखंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मंड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई जग की नो विस्तार
1: कई बार पसरियो पासार
0: सदा सदा एक एक अंकार
1: कई कोट कीने बहु भांत
0: सत्य होए प्रभ महे समात
1: ताका अंत न जाने कोई
0: आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास
0: हो वत्या तम प्रकाश
1: कई कोट तत्व के बेते
0: सदा नहारे एको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीव है
0: अमर भय सद सद ही जीव है
1: कई कोट नाम गुण गावे
0: आत्म रस सुख सहज समावे
1: अपने जन को साथ साथ संभारी
0: नानक हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई
0: नानक दिस बलहार ने जल थल मैयल सोए अष्टपदी
1: करण करावन करने जोग
0: जोत सभावे सोई होग
1: फिर मैं थाप उताप नहारा
0: अंत नहीं किस बारा वारा
1: हुक्मे धार अतार रहावे
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे
1: हुक्मे ऊच नीच व्यवहार
0: हुक्मे अनक रंग प्रकार
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई
0: नानक सब में रहा समाई
1: रब भावे मानो गत पावे
0: रब भावे ता पात्र त्रावे
1: रब भावे बिन सास ते रखे
0: रब भावे ता हर गुण पाखे
1: रब भावे ता पत उधार है
0: आप करे अपन विचारे
1: दोहा श्रिया का आप स्वामी
0: खेले बिकस अंतर जामी
1: जो भावे सो कार करावे
0: नानक दृष्टि और न आवे
1: बहु मनुख ते क्या होए आवे
0: जोत सभावे सोई करावे
1: किसके हाथ होए ता सब पिछले
0: जोत सभावे सोई करे
1: मन जानत बिखिया मह रचे
0: जे जानते अपने आप बचे
1: भरमे भूला दह दिस धावे
0: नमक माहे चार कुंड फिर आवे
1: कर कृपा जिस अपनी भक्त दे
0: नानक ते जन नाम मिले
1: छिनवे नीच कीट को राज
0: पार ब्रह्म गरीब नवाज
1: जां का दृष्ट कछु न आवे
0: जिस तत्काल दह दिस प्रगटावे
1: जां को अपनी करे बख्शीस
0: ताका लेखा न गणे जगदी ਜਗਦੀਸ਼
1: ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ
0: ਕਟਕਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ
1: ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ
0: ਕਰ ਕਰਾਉਣ ਸਭ ਕੋ ਨਾਥ
1: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਉ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫਨ ਥੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹੱਸੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਉਭ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਰਵ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ
1: ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਿ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਦੀਆ
0: ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰਮਿਆ ਪਰਮੀਆ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ
0: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਵੈ ਨ ਜਾਵੈ
1: ਜੋ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਹਿ ਪਾਵੈ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੌਰ ਨ ਆਵੈ
1: ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ
1: ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਬਸੈ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਕਟਾਨਾ
0: ਜੋ ਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ
1: ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ
1: ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ
0: ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸੋ ਨਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ
0: ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ
1: ਆਪ ਸੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ
0: ਜਨਮ ਮਰੈ ਭਉ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ
1: ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ
0: ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ
0: ਨਾਨਕੀ ਹਾਂ ਮੁਕਤਿਆ ਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਭਾਵੈ
0: ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਾ ਸਚੰਗ ਨ ਜਾਵੈ
1: ਭਉ ਲਸਕਰ ਮਨੁੱਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ
0: ਪਰ ਭੀਤਰਤਾ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ
1: ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ
0: ਹੋਏ ਜਾਏ ਬਸਵੰਤ
1: ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਤਾ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ
0: ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ
1: ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹਉ ਧਾਰੀ
0: ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੇ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ
1: ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ
0: ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ
1: ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ
0: ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ
1: ਆਪ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ
0: ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ
1: ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ
0: ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ
1: ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ
0: ਜਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ
1: ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ
0: ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ
1: ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ
0: ਤਬਲਕ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ
1: ਜਬਲਕ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ
0: ਤਬਲਕ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇਸ ਜਾਏ
1: ਰਬ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਾਂ ਛੁੱਟੈ
1: ਸਹਿਸ ਕਟੇ ਲਖ ਕੋਟ ਧਾਵੈ
0: ਰਤਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ
1: ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ
0: ਨੈਤ ਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ
1: ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ
0: ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਫਿਰ ਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ
1: ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਪ੍ਰਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
0: ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ
1: ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਪੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੰਗ
0: ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗ
1: ਦੂਜਾ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ
0: ਆਪੇ ਏਕਾ ਪਿਆ ਨੇ
1: ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ
1: ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ
0: ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ
1: ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਵਿਸਥਾਰ
0: ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
1: ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ
0: ਆਂਤ ਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ
1: ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
0: ਗੌਤ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ
1: ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ
1: ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ
1: ਸਚ ਸਚ ਸਤ ਸਭ ਕੀਨਾ
0: ਕੋਟ ਮਦੈ ਕਿਨ ਵਿਰਲੇ ਚੀਨਾ
1: ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ
0: ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ
1: ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ
0: ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸਰ ਹੁਣ ਵਖਿਆਣੀ
1: ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ
0: ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ
1: ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰ ਨਹਾਰ
0: ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰ ਜਾ ਘਟੈ
0: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ
1: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ
0: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ
1: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ
0: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੋਭਾ ਦੇ ਹੀਨ
1: ਸੰਤ ਕੇ ਹਥੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨਾ ਕੋਈ
0: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ
1: ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ
0: ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਬੀਤਰੈ
1: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ
0: ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜਿਉਂ ਲਵੈ
1: ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ
0: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਰਮਾਏ
1: ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹਿ ਜਲੈ
0: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ
1: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ
0: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨਿਚਾਏ
1: ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਓ ਕੋ ਨਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀ ਕਤ ਪਾਏ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਕਿਨ ਟਿਕਣ ਨ ਪਾਈ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਥਿਆਰਾ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰਦੀਨ
1: ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਰਬ ਰੋਗ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ
1: ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ
0: ਨਾਨਕ ਸਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੋਖ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ
1: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਡਾਨ ਲੱਗੈ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ त्यागै,
1: संत का दुखी महाअहंकारी,
0: संत का दुखी सदा बेकारी,
1: संत का दुखी जन्म मरै,
0: संत की दुख न सुख ते तरै,
1: संत के दुखी को नाही ठाऊं,
0: नानक सत भावै तां लए मिलाए,
1: संत का दुखी हर बीज ते टूटै,
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचै,
1: संत के दुखी को उद्यान फरमाइयै,
0: संत का दुखी उजड़ पाइयै,
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
0: जो सास बिना मृत की लोथा,
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही,
0: आपन बीजिया पे ही खाहे,
1: संत के दुखी को अवर न रख नहार,
0: नानक सत भावै तां लए उबार,
1: संत का दुखी इउं बिल लाए,
0: जो जल बे हुन मछली तड़फड़ाए,
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजै,
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापै,
1: संत का दुखी छुटै अकेला,
0: जो गुआर तेरे खेत माहे दुहेला,
1: संत का दुखी धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत,
1: कीर्तन का तुर ही पया,
0: नानक जो तिस भावै सोई थिया,
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहकाइयै,
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइयै,
1: संत के दुखी की पूजै ना आसा,
0: संत का दुखी उठ चले निराशा,
1: संत के दुख न दृष्टै कोई,
0: जैसा भावै तैसा कोई होए,
1: पया कीर्तन मिटै कोई,
0: नानक जाने सच्चा सोए,
1: सब कर तिसकी हो करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार,
1: राखी उसत करहु दिन रात,
0: तिसे त्याहु सास गिरास,
1: सब कछु वरतै तिसका किया,
0: जैसा करे तैसा को थिया,
1: अपना खेला करने हार,
0: दूसर कौन कहे विचार,
1: जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे,
0: वडपा की नानक जन से श्लोक,
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय,
0: एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए, अष्टपदी
1: मनुख की टीक बिरती सब जान,
0: देवन पौ एक है भगवान,
1: जिसके दिया रह अगाही,
0: और न तृष्णा लागे आए,
1: मारे रखे एको आप,
0: मानक कृष्णा ही हाथ,
1: इसका हुक्म भूत सुख होए,
0: इसका नाम रख कंठ परोए,
1: सिमर सिमर सिमर प्रार सोए,
0: नानक बिघन न लागे कोए,
1: उसत मन में कर निरंकार,
0: कर मन मेरे सत व्यवहार,
1: निर्मल रसना अमृत पियो,
0: सदा सहेला कर ले जियो,
1: नैनो पेक ठाकुर का रंग,
0: सह संग पिन सह सब संग,
1: चरण चलो मार्ग गोविंद,
0: मिटे पाप जपिए हर बिंद,
1: हर हर कर्म श्रवण हर कथा,
0: आदर ज्ञान नानक उजल मथा,
1: बड़ भागी ते जन जग माहे,
0: सदा सदा हर के गुण गाहे,
1: राम नाम जो करे विचार,
0: सेतन मंतक नि संसार,
1: मन तन मुख बोले हर मुखी,
0: सदा सदा जानो ते सुखी,
1: एको एक एक पछाने,
0: एतो तकियो सोजी जाने,
1: नाम संग जिसका मन मानिया,
0: नानक तने निरंजन जानिया,
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजै,
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझै,
1: साथ संग हर हर जस कहत,
0: सर्व रोग त्यो हर जन रहत,
1: आन दिन कीर्तन केवल बखियान,
0: सोई निर्वाण,
1: एक ऊपर जिस जन की आशा,
0: उसकी कटिए जम की फसा,
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख,
0: नानक से न लागे दुख,
1: जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे,
0: सो संत सोहेला नहीं जुलावे,
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे,
0: सो सेवक को किसते डरे,
1: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया,
0: अपने कार्य में आप समाया,
1: सोधत सोधत सोधत सीजया,
0: प्रसाद तत् सब पूजे,
1: जब देखो तब सब शमूल,
0: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल,
1: मैं किस जन मैंने किस मरे,
0: अपने चलते आप ही करे,
1: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट,
0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ,
1: आपे आप सगल में आप,
0: अनक जुगत रच था व्यथा,
1: अविनाशी नाही किस खंड,
0: धारण धार रहो ब्रह्मांड,
1: लख पे पुरख प्रताप,
0: आप जपाए तन नानक जाप,
1: जिन प्रभु जाता सो सो बावंत,
0: सगल संसार उदर तन मंत,
1: प्रभ के सेव सगल उदारन,
0: प्रभ के सेवक दुख बिसारन,
1: आपे मेल लई कृपाल,
0: गुर का शब्द जप भई निहाल,
1: उनकी सेवा सो ही लागे,
0: जिसनो कृपा करे बट भागे,
1: नाम जपत पावे विश्राम,
0: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान,
1: जो किस करे सो प्रभ के रंग,
0: सदा सदा बसै हर संग,
1: सुपाई हो वैसो हो
0: करने हार पछाने सोए,
1: आपका किया जन मीठ लगाना,
0: जैसा सत ऐसा दृष्टाना,
1: जिसकी उपजे तिस माही समाई,
0: सुख निदान उन्हों बनया।

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर्व जिया आपे पतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: जिसने व्रता कोई ना है
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभ आपे आप
1: अपन की या कशु न होए
0: ये सो प्राणी लोचे कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: रत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह है
0: रब की ज्योति सगल घट सो है
1: धनवंता होए क्या को भर पै
0: जा सब कुछ तिसका दिया धर पै
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहता वे
1: देखो होए बह दातार
0: इस देन हार जाने का वार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थमे थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने असथमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़त रहे
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तरे
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
1: तिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख काहे बिरलाई है
0: गुर लिखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग तू तिसे चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: ला काहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: डॉक्टर है हो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माही
0: नानक पद से ती कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: आदि मान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संता संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: धन धन कह सब कोई
0: मुखो जलहर दरगह सोए
1: एहो व्यापार बिरला व्यापार है
0: नानक ताकै सतगुर हार है
1: चरण साध के धोए धोए पियो
0: हर प्रसाद को अपना जियो
1: साध की धूर करो इशनान
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा वट भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अंत बिगन ते साधु राख है
0: अर्पण गाय अमर तरस चक है
1: और गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जी वाल नहार
0: उखे कौ दे बते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरु लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिसका करना है जोग
0: जिस बिन दूसर हवा न होग
1: जप जा सदा सदा दिन रहनी
0: भक्ति उच निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाके मन को की प्रतीत
0: जिन आवे हर प्रभु चीत
1: भक्त भक्त सुनिया तिह लोए
0: जाके हृदय एको होए
1: सच करनी सत्ता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट सचा आकार
0: सच पर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सो जन सच समाता श्लोक
1: रूप नरेख नरंग किछ त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न
0: सब बुझाए नानका जिस होवे सो परसन अष्टपदी
1: अवनासी ब्रह्म मन मह राख
0: मानो की तू प्रीत त्याग
1: तेसे परे नाहीं किछ होए
0: सब निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा ध्यान दयाल बख्शंद
1: साथ तेरे की चरनी पाऊं
0: नानक कै मन ए नराव
1: मनसा पूर्ण सरना जोग
0: कर पाया सोई हो
1: हरन भरन जा का नेत्र फोर
0: इसका मंत्र न जाने होर
1: हंद रूप मंगल सद जा कै
0: सर्व थोक सुनिए करता कै
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: तप मत पीसर कृष्ण मह भोगी
1: त्याय त्याय भक्तां सुख पाया
0: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत नाही
0: सगल देव हारे अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: देह गुण में जाको परमाई
0: जन्म रेफरे आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेख करे एक रंग
1: नाना विद किनो विसार
0: रब बनासी एक अंकार
1: नाना चलित करे किन माही
0: पूर रहे पूर्ण सब ठाए
1: नाना विद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ
0: जब जब जीवे नानक हर नाम
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब भवन
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जा का सत स्थान
0: सत के बल प्रधान
1: करतूत सत सत जा की वाणी
0: सत पुरुष सब माहे समानी
1: सत कर्म जा की रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रकाश खुदाई
0: विश्वास सत नानक गुर ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत ते जल जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित बुझे जे कोई
0: नाम जबरता की गत होए
1: आप सत की असब सत
0: आपे जाने अपनी मित गत
1: जिसकी सिफ्ट सो करना है हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक जोत स्वभाव है सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्म भय बिस्माद
0: जिन बुझिया तिसे आया स्वाद
1: सब कह रंग राज जन रहे
0: गुर कह वचन पदार्थ लहे
1: होए दाते दुख काटन हार
0: जन कह संग तरह संसार
1: जन का सेव सो वट भागी
0: जन कह संग एक लिव लागी
1: गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे
0: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
1: आद सच जुगाद सच
0: पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसनहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत त्यावनहार
1: आप सत सत सतधारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: बुजनहार को सत सब होई
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जनमानिया
0: नानक रावण तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभाया
0: तत के अंत समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजे ते समाहे समाना
1: बस माही ले बस कड़ाई
0: ताको भिन्न न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: प्रभु का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभु पालन हारा
0: सेवक की रख निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभु धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समार
1: अपने जान का पर्दा ढकै
0: अपने सेवक की सर पर रख
1: अपने दास को देव डाई
0: अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आप पत रखै
0: ताकि कदमित कोई न लख
1: रब के सेवक को कोऊ न पहुंचै
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रख
0: भस्म करै लस कर कोट लख
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य प्रथे जात
1: मारा न रखै अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभु लख बडाणी
1: बारंबार बार प्रभु जपी है
0: अमृते मन तन तृपी है
1: नाम रत्न जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न हिंदृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मतन नाम में नाम समाने
1: ऊर्त बैठ सोबत नाम
0: रहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रब अपने जन की नी दात
1: करे भक्त आत्म कह चाई
0: रब अपने से रहे समाई
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रब अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण कह एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: रहो नानक से जन पूरे
1: मर मेरे दिन की ओट ले
0: मन तन अपना तिन जन दे
1: जिन जने अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पावे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अवर सियान पसगली छाड़
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न होवी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: जिसके संग सिख उदर है नानक हर गुण गा अष्टपदी
1: सतगुर सिख की करे प्रतपाल
0: सेवक अगुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिरै
0: गुर बचनी हर नाम उचरै
1: सतगुर सिख के बंधन काटे
0: गुर का सिख बकार ते हटे
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख बड़ भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवारै
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै
1: गुर के गृह सेवक जो रहै
0: गुर की आज्ञा मन में सहै
1: आप उसको कर कष्ट न जनावै
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावै
1: मन बेचै सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत होए निकामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: इस विश्वे गुर का मन मान है
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाऊ
0: नानक बार गुर कौ बल जा
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आज पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कछ भरम
1: सह सियान पलिया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: दर्शत चरणगत निर्मल रीत
1: भेट संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगाह गवे
1: सुनकर वचन करन आगाने
0: मन संतोखा तंपति जाने
1: पूरा गुर अक्यो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्टि पे कहे हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भाव दिस लए मिलाए
1: जे भाई को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: कहू बोल न पहुंचत पुरानी
0: अगमा गोचर प्रभु निर्वाणी
1: मेरा हार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंदन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतगुरु अपने
0: नानक जिस पर सादा सा प्रभु जपने
1: यो हर रस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमर सोए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन पर टे गुणतास
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक भरम बहुत दुख ते नासे
1: सत माही ठांड वरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: भव चुका निर्भव होए बसै
0: सगल व्याध मन देखे नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: साध संग जप नाम मुरारी
1: थित पाई चुके भ्रम गमन
0: सुन नानक हर हर दस सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने चरित प्रभु आप बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सब निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साधक संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चल बिन भजन बिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी।
1: संत जना मिन करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अवरो पाप समीत बसारो,
0: शरण कमल विद मैं उरतारो,
1: कर्म कान सो प्राप्त समर्थ,
0: दृढ़ कर गहो नाम हर बथ,
1: एहो तन संजो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार पुंट उठता वही,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करहे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाए,
0: रोग मिटे हर अवखद लाए,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोध हर कह नाई,
0: दैत स्थाप ते आ बैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसै हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: अवबिन सह पूर्ण हो आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसै अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: मत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: क्यों रत्न जन्म का होई उधार,
0: हर हर सिमर पुराने आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करहु मन लाए,
0: मन वंशित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: काल पटावे मूर्ख मना,
1: सुत मीत कुटुंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू ले आने,
0: भगत बिना बहु डूबे सियाने,
1: भक्ति भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तमारो चीत,
1: चरण कमल राखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहि,
1: आप जपो अवरा नाम जपावो,
0: संत कहत रहत गत पावो,
1: सार भूत सत हर को नाओ,
0: सहस भाई नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: नरस जाय हो मैं बिख फैल,
1: होए अचिंत बसै सुख नाल,
0: सात ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सस्तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: हम सब दरगह जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जप एको सलाह,
0: एक समझ एको मन आहे,
1: एक के गुण गाओ अनंत,
0: मंथन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे प्रभ्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक अराध प्रास्त गए,
1: मंथन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करिया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए अष्टपदी,
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म मेरी शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ के गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: भजन करो प्रभ की नित नीत,
1: एक कोट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोई,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साध का संग,
1: परे शरण आन सत्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग,
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुर दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: इच पुन्नी सरदा सा पूरी,
0: गव रहया सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाए,
1: सोक्यों बिसरे जे काल न पाने,
0: सोको बिसरे जे किया जाने,
1: सोक्यों बिसरे जे सब कुछ दिया,
0: सोको बिसरे जे जीवन जिया,
1: सोक्यों बिसरे जे अग्न मह रखे,
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है,
1: सोक्यों बिसरे जे बिख ते काट है,
0: जनो जनम का टूटा गंड है,
1: गुर पूरा तत ए है बुझाया,
0: प्रब अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो ए काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अपने नाम जपावो,
1: भगत भाई तरिय संसार,
0: भक्ति तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निद नाम,
0: मूढ़ जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का हो नाश,
0: नानक नाम जपो गुणतास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाओ,
1: नेत्रों पेख दर सुख होए,
0: मन बिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: अल्लाह को पावे संग,
1: एक बस दीजै करमया,
0: गुरु प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: प्रभ बख्शंत दीन दयाल,
0: भगत बशल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: हाथ पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो होई पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी शोभा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख न

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दाखे लक करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी

तालीम नहीं दिती। चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच ओ पैदा होए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालांकि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक ओनू नजर टिका के देख दिए। चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है, अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नू अपने जिस्म नू कमाना है, उदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नू उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए। गर्दन मोड़ती है, कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नू चुका के अपनी पिट ते ला लेंदी है, ते कई वरी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचों अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला वचन किया, चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है, ते ओ एक टिक चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लानी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खून सुखाले। हुण इत्थे भावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है, दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानण विच उन्हां दा मिलाप है, ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नू पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नू मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नू पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओह केड़ी खिच है जिहड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकार दे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की एक टिक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा कीती है। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा वचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है, लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल होन सुखाले, निहो कवल जल जानिए खिड़ मूह बखाले। हुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे, पानी रुकण दी देर है
ਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण @604581190।

अकल महान होवे मनुख छेती उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, अकल तो चोट खा के। इस संबंध च भी मैं गालिब दी एक नज़म थोड़े सामने रखा। वो कहिंदा है, बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की ये बच्चियां दा तमाशा, बच्चियां दे खिडौने और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तिफल बच्चे नू कहिंदे ने, इतफाल बच्चियां दी जमा बहुवचन। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है छोटे बच्चियां दा तमाशा, खिडौणियां दी खेड। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात ए बच्चियां दा तमाशा हो रहा है, सवेरे खा लिया, शामी खा लिया, फिर सौ गया, फिर दूजे दिन फिर वही कुछ कीता है जो कुछ रोज करते हैं। सब कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रही है, पुनरुक्ति चल रही है। एक खेल है और रंगे सुलेमा मेरे नजदीक, तख्ते सुलेमा नहीं सिंघासन, जेदे लई दुनिया कितने पापड़ बेलती है। कोई पिंड दा चौधरी बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना, कितने पापड़ लोकी बेलते हैं। कहिंदे बच्चियां दा तमाशा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग, औरंग तख्त नूं कहिंदे ने, वड्डा तख्त उहनूं औरंग कहिंदे ने, ए छोटा तख्त इहनूं मसनद कहिंदे ने, मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 प्रचारकां नूं ये मसनद बख्शिश कीती सी, मंजियां बख्शिश कीतियां सन। पंजाबी च असीं उहनां नूं मसंद कहिंदे आ, फारसी दा लफ्ज़ है शुद्ध मसनद, यह मसनद है जिस ते धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। इनू फारसी दे च औरंग कहिंदे ने, वड्डा तख्त जिस ते बादशाह बैठे औरंग, छोटा तख्त जिस ते अहलकार बैठन मसनद। शाहजहां दा लड़का मयोदीन प्यो नू जेल दे च पा के ते तीन भरावां नू मार के जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। नाम वैसे उसका मयुनदीन से, शायद आपको पता होवे आदि काल तो कवि लोग, गुणी लोग, दार्शनिक, फिलोसफर, राजे महाराजे बादशाह अपना तखल्लुस रखते रहे, रखते रहे। तखल्लुस का मतलब है खास नाम, हिंदी च कहिंदे ना उपनाम, कोई उपमा है गुणात्मक नाम, कोई गुण ने तो गुणात्मक नाम रखे है, तखल्लुस रखे है। जैसे हुमायूं का लड़का जलालुद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया अकबर। अकबर का मतलब है सब तो वड्डा, ताई मुसलमान कहिंदे ने अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। पर जलालुद्दीन ने अपना लकब रखिया जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन ही सब तो वड्डा है। इत अकबर उसका तखल्लुस है। अकबर का लड़का शाहजादा सलीम जो जोधा बाई की कुख तो पैदा हुई सी, ते जोधा बाई राजा मान सिंह वालिए जयपुर की भैन से, ये राजपूत अपने धी भैणा दे डोले मुगलों नूं देण लग पए सन, जिहदी अगां चल के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुखालफत की। राजा मान सिंह की भैन जोधा बाई ए बेगम से अकबर दे, इहदी कुख तो पैदा होया शाहजादा सलीम। वड्डा होके जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, इन्हें अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का मतलब है सारा जहान मेरी पकड़ दे च, मेरी मुट्ठी च, जहांगीर। इसने गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद किया, कल गुरुपुरब तुसीं मनाना। इसने ही तरह तरह के तसीहे ताए, इसने ही बहुत वड्डा जुल्म किया। दोगला से जोधा बाई का लड़का से, अकबर का लड़का से, तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का लड़का शाहजादा खुर्रम

धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, नहीं खाऊंदा होवेगा हिंदू गऊ, पर पराया हक खा रहे तो गऊ भी खा रहे, नहीं खाऊंदा होवेगा मुसलमान सुअर, पर पराया हक खा रहे तो सुअर ही खा रहे। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, एक देश दूजे देश का हक मार जाता है, बड़े वड़े वड़े देश जो छोटे देशों का हक खो लेंदे, सारी दुनिया च इस तरह चल रहा है, वड़ियां कौमां छोटी कौमां का हक खो लेंदियां, वड़े मनुख छोटे मनुखां का हक खो लेंदे, सुअर खांदे ने या गऊ खांदे ने और की है, अगर इस हिसाब न लोगे तो सुअर खांदे ने गऊ खांदे ने। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हामा तां भरे जा मुरदार ना खाए। गुरु पीर हामी भर सकदा अगर मुरदार ना खावे, तो मुरदार की है, हिंदू लई गऊ खाना मुसलमान लई सुअर खाना पराया हक मुरदार है, मुरदा है, ये तो मुरदा खाना है। औखे ना होना, बगौर गहराई नाल देखोगे वड़े वड़े देश छोटे देशां नूं खा रहे ने, मुर्दे खा रहे ने, वड़ियां वड़ियां कौमां छोटियां कौमां दा हक मार जांदियां, वड़े वड़े मनुख छोटे मनुखां दा हक मार जांदे ने। जद किसे दा हक मार लिया तो मुर्दार ही खादा है और की खादा है, इसे नूं हराम कहंदे ने, ये भी मैं अर्ज करदे आ। और महाराज कहंदे ने बड़े ने इतनी वड्डी सियाणप है, खांदे भी हराम ने, अगले नूं कख भी नहीं पता चलता, खांदे भी मुरदार ने, अगले नूं कुछ भी नहीं पता चलता, इतनी दृष्टि ते है अंधेरे च वेख सकदे ने, रोशनी च नहीं वेख सकदे। तो जो अंधेरे च वेख सकदा है रोशनी च नहीं वेख सकदा, गोगू है और कोई की है, गोगू है। संपत दौल झूल संग झोलत, माया मगन फिरत घोगना। सतगुरु ने उस प्रश्नकर्ता नु चुप करा दिता सी जिसने किया सी महाराज शब्द सारिया दे हिरदिया नु रोशनी नहीं देंदा, सूरज देंदा है, सूरज सारिया लई बार चानना कर देंदा है, गुरु दा शब्द सारिया दे हिरदे च प्रकाश नहीं करदा। फिर एक करोड़ा सूरजा वर्गा किस तरह होया, दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, हाथ जोड़ के मैं माफी मंगा। घुग्गू थोड़े ने बहुत ज्यादा नहीं ने, पंछियां दे पशुआं दे ओ थोड़े जिया ने, जिन्हां रात दी तारीकी दे दिखाई देंदा है, दिन दे चानने च नहीं दिखाई देंदा। मनुखी दुनिया च ए घुग्गू बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने, झूठ दे च तेरा सांदा है, सच दे च कोई नहीं, गंदे गीतां दे च तेरा सांदा है, शब्द दे च कोई नहीं, बिखे नाद दे च तेरा सांदा है, रब्बी संगीत दे च कोई नहीं। इन्हां दा तालमेल रात नाल बैठदा है, दिन नाल नहीं है। तो चूंकि रात नाल ताल बैठदा है, तो इन्होंने साधन भी उस तरह के बनाए ने, क्लब ने, थिएटर ने, शराबखाने ने, वैशीहाले ने, जुए खाने ने, सब रात नूं खुलदे ने, इन्हां दे दरवाजे रात नूं खुलदे ने, इन्हां दी रौनक रात दी है, दिन दी नहीं है। लॉस एंजलिस दे च इक सज्जन मैनूं कहण लगा, उत्थे भी किधरे धन गुरु नानक देव जी महाराज का हुक्मनामा आया सी, ते उस दिन किधरे हुक्मनामे की कथा करनी सी, इतवार का दिन सी, राती होवन कालियां सुपे दासे वन, देहो बग्गा तप्पे घना कालियां काले वन। पहले पातशाह जी का वाक है, सूरज दिन चिट्टा चढ़े है, पर कालियां चीजा ते कालियां ने कोई चिट्टियां नहीं होईयां, रात काली बोली है, बड़ी भयंकर मसया दी रात, पर चिटियां चीजां ते चिटियां ने कोई कालियां नहीं होईयां।
महाराज कहते ने करोड़ा भी दुष्ट मिल जान संत अपनी सजनता ही नहीं छड़ता, भावे कितनी मस्या की रात हो जाए कितनी कालक हो जाए ओदी चिट्याई रहेगी। राती होवन कालिया सुप्पे दा सेवन, मल्ला पहला सोई मल्ला पहला है, पहले पातशाह जी का वाक। इनू कबीर अपने ढंग नाल इंज बयान करते हैं, संत न छाड़े संत ही जे कोटक मिले असंत, मलयागर भयंगम बेड़े ओ तो शीतलता न तजंत। इन्हों इलाक ते चंदन नहीं है, चंदन भारत दे मैसूर स्टेट दे बहुत ज्यादा है, कर्नाटक दे थोड़ा जिहा, तमिलनाडु दे भी है पर ज्यादा कर्नाटक दे है, थोड़ा थोड़ा आंध्रा च भी मिलता है, मध्य भारत दे भी मिलता है, पर अच्छी नस्ल का जिहड़ा चंदन है बावन चंदन ओ कर्नाटक दे है, बड़ा कीमती। अक्सर जद चंदन दे लकड़ की कटाई आती है तो फिर मोर छड़े जांदे ने, क्यों? चंदन नू सप लिपटे होंदे ने, कोबरे फनियर नाक। चंदन बड़ा शीतल है, चंदन बहुत ठंडा है, तो सप दे सिर दे जड़ी जहर आउंदी है अगर वध जाए सीमा तो फिर खोलदी है, अगर उसनू कोई जानदार चीज जानदार जीव ना मिले हो सकता है पत्थर नो भी डंग मालेगा जहर कढ़ने लिए, क्योंकि सिर उसका खोलता है, वह दरख्त नो भी डंग मार सकता है। कुछ तो कहते ने उही पत्थर संखिया बन जाता है जिन्हों फनियर नाग डंग मारदा है, भारत दे इस तरह मनते ने वैद लोग उन्हों संखिया कहते हैं। सप चंदन नू लिपटे होंदे ने, चंदन ठंडा भरा है, उन्हां दे सिर नू ठंड मिलदी है। अक्सर उत्थे मोर छड़दे ने ते मोर सप्पां नू खा जांदा है, मोर सप्पां ते हमला करदा है, ते सप डंग मारन दे च मोर नू सफल नहीं आउंदा क्योंकि उस दे ऐसे पंख ने उन्हूं कोई चोट ते हानि नहीं पहुंचती। अक्सर सप नसदे ने भजदे ने मोरां नू वेख। भगत कबीर कहते ने सैकड़े सप लिपटे ने चंदन, क्या चंदन जहरीला हो जाता है? कि चंदन कोई गर्म हो जाता है? नहीं, चंदन सुगंध ते ठंड सप्पां नू भी देंदा है। संत ते ओ है जिदी महफिल विच बैठ के कोई चोर भी शांत हो जाए, इतनी मेहरस करते हैं। मैं पढ़ रहा सी सूफी फकीर दी गाथा हसन दी। रात दा वक्त अद्धी रात दा, ईरान दी गल, ईरान ठंडा देश, बर्फां पैंदियां, चोर किदे हसन दी कुटिया दे च वड़ गया। हसन लेटिया होया सी उपर कंबल, दया आ गई, इस चोर नू मेरे घर चो कुछ नहीं मिलेगा, खाली जाएगा, अद्धी रात नू आया है, ठंड दे विच आया है बेचारा, खाली जाएगा। कदी किसे संत ने चोर नू नहीं मारिया, चोरा ने चोर नू मारिया, गौर मतला करना। कदी किसे संत ने दुष्ट नू नहीं मारिया, दुष्टा ने ही दुष्ट नू मारिया, कदी बगौर मुताला करना। जैसे वो देखदा चोर दी अखां रात नाल तालमेल बिठा लैंदियां, क्योंकि दी जिंदगी रात दी है, सहजे सहजे उसनू रात विच दिखाई देण लग पैंदा, अंधेरे विच दिखाई देण लग पैंदा। उन्हें देखिया कुछ नहीं है, जान लगया हसन ने आवाज मारी, मित्रा होर ते मेरे कोल कुछ नहीं, ए मेरे कोल कंबल है, तेरे कोल कंबल भी कोई नहीं, बाहर ठंड बड़ी है, ए ले जा, होर अपने कोल कुछ भी नहीं, ए ले जा।
खाली ना जा, मेरी तोहिन ना कर, मेरी कुटिया चो मेरे घर आंदा ही नहीं कोई, तू आया है और अद्धी रात नू आया है, खाली जा रहे हैं, मैनू दुख है, मेरा हिरदा तड़पदा है, मेरे ते तरस खा, मेरे हिरदे नू तड़पा ना, ऐ ले जा कंबल। चोर दी सारी चोरी निकल गई, पता है उस चोर ने की आख्या, जिंदगी च पहली दफा किसे अमीर दा घर लभ्या, आया तो मैं लुटन सी, मैं खुद लुटिया गया। वो चोर फकीर हो गया हसन दी संगत नाल, हालांकि उसनु चोर ते भी तरस आ रहा सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कितनी काली रात हो, चिट्टियां चीजां ते चिट्टियां ही रहिंदियां ने, कोई कालियां थोड़ियां हो जांदियां ना। और कितना ही चिट्टा दिन तपया होवे, चारों पासे उसने रोशनी चिटियाई फैलाई होवे, पर कालियां चीजां ते कालियां ही रहिंदियां ना। पंक्ति मैं थानू फिर सुनावा, राती होवन कालियां सुपे दासे वन, देहो बग्गा तपे घना कालिया काले वन। कितना भी सूरज चानना करे, कालिया चीजा कालिया ही रहिंदिया ने। कितनी रात कालख वंदे, चिटिया चीजा चिटिया ही रहिंदिया। जो कहते ने माहौल ठीक नहीं, की करिए, माहौल जरा ठीक हो जाए फिर असी ठीक हो जावांगे। सब बहाने बाजिया ने, अंधेरी रात विच भी चिटियां चीजा चिटियां रहिंदियां ने। कितना ही माहौल खराब हो गया, माहौल ते प्रहलाद का भी ठीक नहीं सी, प्यो वैरी है ते जेल विच पाया हुआ ते चार चार दिन का भुखा, वो जेल विच भी समाधि ला लेंदा, ऐसी घर विच भी नहीं ला सकदे। वो चार दिन का भुखा है सुरत शब्द नाल जोड़ लेंदा, इत्थे भर पेट भी मनुख नहीं जुड़दा। उत्थे प्यो जान का वैरी है फिर भी वह प्रभु नाल जुड़े होया है, इत्थे मां बाप का लाड मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, फिर भी प्रभु नाल जुड़ना नहीं है। माहौल ते प्रहलाद का भी ठीक नहीं है, माहौल राम का भी ठीक नहीं है, बनवास है। रात रुखां तले कटना होंदा है, दिन नूं किधरे भोजन नसीब होएगा कि नहीं, कि कंध मूल खा के गुजारा करना होएगा, जिंदगी ते कुछ भी नहीं है, माहौल ते ठीक नहीं है। लेकिन वो जिथे भी ने जंगल देश भी मंगल है। माहौल कृष्ण का भी ठीक नहीं है, राजघराने का लड़का है, पाल दे गुजर पे ने, ग्वाले पे पाल देना, शाही खानदान का लड़का ग्वाले पे पाल देने, ये सब बहाने बाजिया ने। जरा माहौल ठीक हो जाए अमृत भी छक लवांगे, जरा माहौल ठीक हो जाए एक कलगीधर पातशाह सी तेरी रहत बहत भी रख लेंगे, जरा माहौल ठीक हो जाए असी अमृत वेले भी उठांगे, जरा माहौल ठीक हो जाए असी नाम भी जपांगे। सब बहाने बाजिया ने, माहौल कभी ठीक नहीं होंदा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहती है, सारी जिंदगी रहती है कुछ ना कुछ तो होंदा। सागर लहरां तो बिना नहीं आउंदा, जिंदगी समस्यावां तो बिना नहीं आउंदी, कुछ ना कुछ तो समस्या रहेगी। माहौल गुरु नानक दा भी ठीक नहीं, पिता मखट्टू कहिंदा है, ममता दी मारी होई मां कहिंदी है, कोई पुत्र है मेरा सुदाई है, सुदाई है। बेदी कहिंदे ने पूतना बेताला है, बेदी होंदे होया जनेऊ नहीं पहनदा, बेदी होंदे होया वेदां ते श्रद्धा नहीं रखदा, बेदी होंदे होया वेद नहीं पढ़दा, बेदिया दे घर जन्म। ब्राह्मण भी कहते ने कुराई है, बूतना बेताल है,
बगदाद देश के मुसलमानों ने पत्थर भी मार दिता है। माहौल तो ठीक नहीं है, बाबर ने जेल देश भी पा दिता है। माहौल तो गुरु अर्जन देव जी का भी ठीक नहीं है। वड्डा भिरा पृथ्वी चंद वैरी है, जान दा वैरी है। मसंद उसने सारे बागी कर ले ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा घर घाट लुट लिया, अन्न लुट लिया, धन लुट लिया, बस्तर लुट ले, सारा साजो समान लुट लिया, चारों पासे पैरा बिठा दिता। अमृतसर दे कोई संगतां गुरु अर्जन देव जी तक पहुंचन भी ना। होंदे ने इस तरह दे लोग, गुरु तक कोई ना पहुंचे, और इस तरह के भी लोग होंदे ने गुरु साढ़े तक ना पहुंचे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दरबार साहब जद गए ना, मसंदा ने दरवाजे बंद कर दिते। गुरु दा घर गुरु लई बंद, गुरु तेग बहादुर साहब नू अंदर नहीं आन दिता मसंदा ने। पता सतगुरु बाहर बैठे, थड़ा साहब गुरुद्वारा अज भी मौजूद है, बाहर बैठ के दरवाजा बंद कर देता, तुसी नहीं जा सकते। जब सच आ जाए ना तो फिर झूठियां नू कौन पूछेगा। तो झूठे नू ये डर होंदा है, सच आवे ही ना, आवे ही ना। करीबन करीबन इस तरह दे लोग इंज कह लो चर्च दे चो मस्जिद दे चो मंदरां च खुदा नू कढ छड़ दे होंदे ने। खुदा तो बिना चर्च की पूजा कर देने, भगवान तो बिना मंदरां दे च पूजा चलती है। बगौर मतला करना ऐसा होंदा है, क्योंकि भगवान होवे तो फिर शैतान नू कौन पुछेगा, सच होवे तो फिर झूठ नू कौन पुछेगा। इतनी रोशनी हो जाए तो फिर अंधेरे किथे जाणगे। शेख सादी ने तो कहानी लिखी है भई अंधेरा रोंदा पिटदा खुदा कोल चला गया, ते आखन लगा खुदावन ताला एक तू मेरे जान दा वैरी बनाया है, मैनू टिकन ही नहीं देंदा इस सूरज, मेरे पिछे लठ लैके पिया है, ये तू मेरे लिए बनाया है, मैनू टिकन ही नहीं देंदा किधर है, मेरा पक्का दुश्मन, तुसी इसनू रोको, मेरे नाल दुश्मनी ना करे, मैनू टिकन देवे। कहानीकार शेख सादी लिखता है खुदा ने सूरज नू तलब किया, आखिया आज अंधेरा मेरे कोल फरियाद लेके आया सी, बड़ा रोया है, बड़ा रोया है, तेरी शिकायत करदा सी, तू उस नाल क्यों वैर कमाना है, तू क्यों उस नाल दुश्मनी करना है। सूरज ने हाथ जोड़ के आखिया खुदावन ताला मैं ते कदी वेखिया ही नहीं अंधेरे नू, ते जिन्हों मैं वेखिया नहीं उहदे नाल कदी दुश्मनी मेरी, मैं तो जानता ही नहीं उसनों, मैनू पता ही कोई नहीं, मैनू तो नाम धाम का ही पता कोई नहीं, हे खुदा मैं क्यों उस नाल दुश्मनी कमावांगा। सच दे होंदिया झूठ रह नहीं सकता, इस वास्ते झूठ की पूरी कोशिश होंदी है दरवाजे बंद करो, सच नहीं आना चाहिए, हिरदे के द्वार बंद करो, सच अंदर नहीं आना चाहिए, मंदिर के दरबार बंद करो, भगवान नहीं आना चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब लई दरवाजे बंद कर दिते, इतिहास है। सतगुरु वापस जान लगे इत अमृतसर दिया मातावां ने रोक लिया, नहीं तो जान लगे सन, उन्होंने नहीं जान दिता। तो पता है कवि संतोख सिंह जी ने की लिखे है, सारे अमृतसरिया लई नहीं ने, मैं अर्ज करें भाई संतोख सिंह जी दे बोल, ए मसंद जो अमृत सरिए त्रिशन अगन के अंतर सड़िए। ए जो मसंद ने, ए जो पुजारी तबका है, ए जो धार्मिक तबका है, ये त्रिशना दे सड़े हुए ने, ये अंधेरे दे जीण वाले ने। माइया रब रजाइया, एक कवि संतोख सिंह जी ने लिखे है सतगुरु दे मुखार बिन तो ये बोल निकले, मातावां ने रोक लिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने नहीं तो मसंदा ने ते बाहर कढ दिता सी।
ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੰਨ ਧਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੈਸੇ ਝੁਕ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲੇ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਧਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸ਼ੈ। ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ 10-20 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਅੰਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਟਟੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਤਾਂ ਕੁਛ ਲੱਭੇ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਬਣਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨਿਆ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ

धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा अमृतमई बोल अमर कलाम जो आप दे कंठ तो प्रगट होया रूखो भोजन 91 राग दे अंदर है। कदी कदी भाई कल्याण सिंह पड़ताल लगांदे ने इस शब्द दी। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रेसंग सुख बेहत ऐ सखी तू रो ना पृथ्वी चंद अन्न लुट के ले गया है धन लुट के ले गया है वस्त्र लुट के ले गया है शस्त्र लुट के ले गया है पर इना सारिया चीजा नू देन वाला जड़ा महान दाता है उते मेरे हिरदे च बैठा है उन्हों ते लुट के नहीं ले गया फिर रोना केड़ी गल दा। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रेसंग सुख बेहात संत न छाड़े संत ही जे कोटक मिले असंत माहौल बाहर दा कितना भी खराब क्यों ना होवे संत अपना मन खराब नहीं करदा। इतनी मेहरस करते हैं छोटियां छोटियां गल्लां दे बहाने बाजे जरा माहौल ठीक नहीं ठीक हो जाए अमृत छक लवांगे। तू माहौल ठीक करदिया ही करदिया अपनी जिंदगी लगा बैठेगा कदी नहीं छक सकेगा। माहौल किसका ठीक होया है किसी का भी नहीं होया। बड़े बड़े अवतारी पुरुषों का माहौल ठीक नहीं होया तो तेरा कितों हो जाएगा। सारी जिंदगी जंगो जदल दे लंघ गई मुहम्मद साहब की सारी जिंदगी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की संघर्ष दे लंघ गई। अला यार खां जोगी लिखते ने आधार ने कभी तुझको संभलने ना दिया था आराम से पहलू को बदलने ना दिया था ऐ कलगी दरपाशा तुसी ते एक रात भी आराम दे नींद नहीं सो सके कांटा दिले पुरखों से निकलने ना दिया था तुसी ते हर वक्त संघर्ष दे रहे भज दौड़ दे रहे कदी इधर कदी उधर अदावतां बाई धार दे राजियां दी अदावत वक्त दी हकूमत औरंगजेब दी अदावत सोडियां दी अदावत मसंदां दी अदावत तीरमल दी अदावत चारों पासे अदावत ही अदावत। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने देखिया सिखी दा दायरा बहुत बद गया बिहार आसाम महाराष्ट्र गुजरात सब लपेट दे चाह गया तो गुरबाणी दे स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप बहुते चाहिए ने। धीरमल कोल मंग की थी ताकि इस दे उतारे करवाई गए बीड जो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखवाई ते भाई गुरदास जी ने लिखी पता है धीरमल ने की आख्या जे वाकई गुरु नानक दी गद्दी दे वारस हो तुसी तो खुद उच्चारण कर लो मैं नहीं देने ते जे सूर बीर हो तो मेरे नाल जंग करके वेख लो जे तुसी सूर बीर हो तो युद्ध करके वेख लो जंग करके वेख लो ते जे गुरु नानक दी गद्दी दे वारस हो तो खुद उच्चारण कर लो मैं नहीं देने दोहां दे जिहड़ा रस्ता चुनना ने चुन लो मैं किसी कीमत ते भी नहीं देने युद्ध करना है तो युद्ध करके वेख लो जंग करके वेख लो। धीरमल कोल भी फौज सी और लड़ाक बिरती उसकी है ही सी सतगुरु ने मुनासिब नहीं समझिया धीरमल नाल युद्ध करना वरना बड़े बड़े युद्ध होए ने पर धीरमल नाल युद्ध करना धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुनासिब नहीं समझिया। दमदमा साहब दे च बैठे ने मौज दे च कागज मंगवाए कलम अपने हथों दिती मनी सिंह नो आखिया सतगुरु दे स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे स्वरूप तैयार करने ने सिखी दा दायरा वध गया बाणी दा पाठ थां थां ते हो गया गुरबाणी दे स्वरूप दे दर्शन थां थां ते हो गए। कहिंदे ने तीन महीने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उच्चारण कर दे गए भाई मनी सिंह लिख दे गए ये पहली भीड़ जो करतारपुर की अजकल जो रामसर विच लिखी गई थी करतारपुर विच मौजूद है धीरमलिया दे कोल इहदे लिखारी भाई गुरदास जी सन उच्चारण करता गुरु अर्जन देव जी ए जिहड़ी भीड़ प्रकाशमान है सारी दुनिया

0: अग भी सार दे दुनिया च। बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दहे, काया कल्प की जय। कल्प चिरजीवी रखन लई दवाइयां खानियां, जड़ियां बूटियां जोग मत वालियां। काया कल्प की जय, असमेद जग की जय। आ जे इस सवैये दे अर्थ, ओह जग करे जिदे विच घोड़िया की बली दित्ती जांदी। असमेद जग, असमेद जग की जय। सोना गर्भदान की जय। सोना फरूट विच रख के जिवें पेठा नहीं हुंदा, चीर के विच सोना भर दिता, उत्तो बंद कर दिता किसी नूं पता ना लगे। गुरु ग्रंथ साहिब दुआई देख के कहिंदे ने लोको समझो इस गल नूं, बनारसी तीर तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दह काया कल्प की जय, असमेद जग की जय। सोना गर्भदान दी जय, राम नाम सर तौ न पूछे। श्री भगवान भजे बिन पूपत, राम नाम सर तौ न पूजे। छोड़ छोड़ रे पखंडी मन, कपट न कीजे हर का नाम नित नित दीजे। गंगा जो गोदावर जाइए, कुंभ जो केदारा नहाइए, गोमती साहस गौ दान कीजे। हजारा गावां दा दान कर दे तू गोमती दे कंडे, ए भी नदी। महाराज कहिंदे ने आत्म जो नरमाइल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तौ न पूजे। अस दान गज दान, सेजा नारी भूम दान, ऐसो दान नितो नित कीजे। घोड़िया दा दान कर, गवां दा दान कर, इस्त्री दा दान कर। पर सच्चे पातशाह कहिंदे ने सिमरन दे तुल कुछ भी नहीं।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 18 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ 23 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪੌਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 17.98 ਦਾ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪੌਂਡ ਦਾ ਬੈਗ ਲਵੋ 18.98 ਦਾ। ਬੀਸੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 41 ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, 4 ਪੌਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਲਵੋ 2.99 ਦਾ ਪੈਕ।
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स, हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
3: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
6: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਟੈਕਸ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬਾਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਲ 604-325-8370, 604-325-8370।
7: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਗਗਨ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 604-349-1313, ਯੂਨਿਟ 103, 8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, 604-349-1313, 604-349-1313, ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।